आंखें उठाई तो दीदार हो गया, आंखें उठाई तो दीदार हो गया, हमने आंखें झुकाई तो इकरार हो गया। तुम ही रहे बेखबर मेरे सनम, हमने आंखें मिलाई

लबों पर तबस्सुम और आंखों में पानी, लबों पर तबस्सुम और आंखों में पानी, यही है दिलजलों की निशानी।

आंखों के खुमार में एक ख्वाब देखा है आंखों के खुमार में एक ख्वाब देखा है चांद के टुकड़े जोड़ जोड़ के आसमान देखा है